जुसुलपाथौ नेपालसम्म चिन्छ सौ पी खुद यनलागा चतुर्दशी थोरै डियो नेपाल ख आनी नदिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा समाचार मोनिया नीति ये पिने उनी पिनी गुनीति थौ निसे बस टिकट च्याक गुदु मोनिया टिकट च्याके न्यहे ये सोनी गया नु बस पार्के मनुते गु लाइन मोमो जुया सोङ्गु दुसा मोनिया नीति छे उनी पिनी गु नीति टिकट काउन्टर थम्ने च्याक गुदु बस पार्के यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल प्रहरी वा यातायात व्यवसायी वा मजदुर दती थोए असोज 20 गते मंगलबार विभागे चुङ्गु बैठक थाउ निसे मोनिया नीति हपाङ्गु खुसी टिकट बुकिङ च्याकेको कोची गुख नु बस पार्के न्याका वया चुङ्गु लोसे बहुद्देश्य प्रालिया महाप्रबन्धक पङ्कज मल्ल वङ्गु चाने गुता इल निसे टिकट क्याकु नीति मनोत लाइन खे चोने त चोना चुङ्गु दु मल्ल बझाङ बाजुरा धनगटी नापाया थिथि जिल्ला निपी मनु त वङ्गु चाने निसेन हु बस पार्के टिकट लाइने सोना सङ्गु दु थया दिलस मोनिया टिकट बुकिया नीति लोसे बहुद्देश्य प्रालिन हु बस पार्के चिङयागु टिकट काउन्टर तना च्याक तगुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या उजवासँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्ग राज पौटेल या बोतीसँग आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी त स्वीकृत भाडा दर शिवे दङका टिकट मिता सहमत लल्हा सहमचुगुदु नकाचकाया मौका तोपिया हवाई भाडा दर उपकु खे धुङकानी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान मिगो स्वपुदुगो आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी या पदाधिकारी वा प्रतिनिधि नापा सल व्याक गुख सल संस्वीकृत भाडा सिबे दङका टिकट मि त अब मिकेगु विशेष वायु सेवा कम्पनी त सहमचुगु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण धागुख क्यान या महानिर्देशक मुकेश ढुङ्गेल या कथ स्वीकृत भाडा सिबे अफुक टिकट क्यान या महानिर्देशक मुकेश डङ्गोलिया कथा स्वीकृत भाडा सिबे दङका टिकट मि त वो थो भाडा दर बारे सूचना स्वपुदुगु कम्पनी या बिक्री वितरण प्लेटफर्म खे पिथ नेता नापा सहमचुगुदु श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग श्रमिक तथा अनिवार्य कथा नखा चका खर्च लल हाकी त फुक्क रोजगारदाता व प्रतिष्ठान त्यता उजौ बिगुदु विभागीय उपनिर्देशक विपिन राज भण्डारी पिथना दिगु विज्ञप्ति रोजगारदाता व प्रतिष्ठान थो सुविधा मोब्युसा सुविधाका मखपी श्रमिकको ज्यामे पेसा थगु कार्यक्षेत्र लाइगु श्रम रोजगार कार्यालय वा श्रम तथा व्यवस्था व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागीय उजुरी निवेदन विभाग पिथना तहको विज्ञप्ति श्रम 2074 दफा 37 कथ प्रचलित धर्म संस्कृति ओ परम्परा कथ हनीगु नखचका नीति श्रमिक पतिक नयाँ तोना वया चोङ्गु लक्ष्य आधारभूत पारिश्रमिक बराबर ढेवा नखा पतिक खर्च कथ का दैगु कानुनी व्यवस्था दुगुनी थो ध्यान आकर्षण यकागु विभाग धया तगुदु नेपाली कंग्रेस चिङयाकको महाधिवेशन कथन हुगु नेतृत्व लिएगु नीति थौ सुतेसिया नेता इलन निसे भोटको फाटियङ्गुदु प्रेस निर्वाचन सामग्री वेता लिपा ल्या धुङ्कानी मतदान या यी थौ सुतेसिया नीति लिछनागु निर्वाचन समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का जानकारी बिहे दिल वेक्ला उम्मेद्वार व मतदाता यिकु दुगु हुने मतपत्र छपाईले लिपा लागुली थौ सुतेसिया नेता इलन निसे हिने स्वता आइतक मतदान जुइगु सूचना बिहे दिल नेकपा एमाले मिगो सोङ्गु स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी स्थायी तह कमिटी कथया अधिवेशन मिति कोचिगुदु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासले चोङ्गु बैठकमा ओडा कमिटी अधिवेशन वैगु मङ्सिर 26 गते व पालिका कमिटी अधिवेशन पुस 4 गते यागु कोचिगुख बैठकमा वैगु मङ्सिर नहापाङ्गु वाले राष्ट्रिय तह मुजिया व स्थानीय तह या ओडा व पालिका अधिवेशन पोङके धुङ्का प्रदेश स्तरीय तह मुजिया गोसा गुएगु कोचिनागु एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य जानकारी बैठकमा मधेस प्रदेश सभासँग समानुपातिक पाखे या रौतहट जिल्लासँग प्रतिनिधित्व याना दिमा जैनव खातुन सी धुङ्कानी खालिजुया चङ्गु थासे समानुपातिक सूची या उम्मेद्वार नाजमा खातुन या त मनोनयन याना निर्वाचन आयोग चोया पौ छुएगु कोचिनागु प्रचार विभाग प्रमुख आचार्य कनादिगु दुसा स्थायी कमिटी बैठक थौहान चोने त्यङ्गुदु
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समृद्ध नेपाल देखेता राज्य निजी लागाओ मुक्क समाज मङ्क राष्ट्रिय संकल्प के जक्क तालाई गुधेया दिगुदु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पदाधिकारी नापा मिग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासे जुग नाप्रा ज्याचुले समृद्ध नेपाल देखेता संकल्प या त व्यवहार हिका निजी लागा अझ भाला कुबिया निहेज्या मागुली सक्कसिन भलसा काइगु भलसा दु धया दिलासा राष्ट्रपति पौडेल नेपालले अर्थतन्त्र यता गतिशील उत्पादनमुखी व ध्यानदे बल्ला देखेता सरकार निजी लागा दतीय सहकार्य मधेक मगा धया दिला वेकला सरकारी नीतिगत स्थिरता लगानी सुरक्षा पूर्वाधार विकास अफैगु प्रशासन व्यवसाय मैत्री लकस देखे मागु व निजी लगान लगानी उत्पादन उद्यमशीलता नव प्रवर्तन व लजगा बोलाङ्के त अझ उपज्या ख तब्याके मागुली बबिया दिला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री नापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहकुलपति सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालय शैक्षिक सुधार या नीति निश्चित शैक्षिक क्यालेण्डर सुशासन व प्रविधि उच्चतम छेलाबुला मधेक मगा ध्या दिगुदु किपुया त्रिभुवन स्मृति भवन मिग गोसागोगु विश्वविद्यालय सबै खुइनेकगु दमुजा दिवस बैठके नाय श्रीस वेकल विश्वविद्यालय याता यी कथा अनुसन्धानमुखी वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय धेन्दे बल्ला या के फे मागु धया दिल मन्त्री पोखरेल प्रवेश परीक्षा भर्ना अध्ययन अध्यापन निश परीक्षा हो डिचो पिकाइबले तक्कै फुक्कम प्रक्रिया यी तालिका कथा यहाँके त पदाधिकारी ते त उज नापाम्बिया दिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नेपाली ब्रान्ड या त हली बजारे पोलिस्ता या त सरकार नीतिगत हो प्रक्रियागत सहजीकरण यायगो धया दिगुदु कर्पोरेट नेपाल मिग ये गोसागोको नेपाली ब्रान्ड परिसंरचना 2083 प्रतिवेदन सार्वजनिक च्यासोले वैकला नेपाली उत्पादन या मौलिकता मसिका बौद्धिक सम्पत्ति या संरक्षण या से विद्यमान नीतिगत व संरचनागत हाठ्या या त महसिका ठिथि कथयाग हाठ्या नहके मागुली भव्य दिल संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा नेपाली ब्रान्ड या विकास मुख व्यापारिक विषयजक मजुसे देया अर्थतन्त्र नापा स्वागुली मौलिक उत्पादन याता प्रभावकारी कथा ब्रान्ड या कथा पलिस्ता या फुसा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र योगदान थिने गुधया दिल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार शाह युरोपेली युनियन ईयू भारत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासँग बोलनीको नुगो आर्थिक संरचनासँग नेपाल लवक्याता संरक्षणमुखी नीति सिबे थेन्ते बल्ला या क्षमता विकास ए बबी मागु ध्या दिगुदु युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर नेपाल हिग ये गोसागोगु युरोपेली युनियन भारत दत्तीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेपाल प्रमुख आर्थिक लाग्या लाग्यो लिचो विशेष सल ज्याचोले वेक्ला नेपाल थगु निर्यात याइगु क्षमता के भिङ्के मागु ध्या दिलसा मन्त्री शाह पश्मिना गलैचा फेल्ट अर्थोडक्स चिया कफी मसला प्राकृतिक उत्पादन व डिजिटल सेवा नेपाल सम्भावना दुगु नेथना दिसे गुणस्तर मसिका मौलिकता लिदंसा अन्तर्राष्ट्रिय बजार धेन्दे बला या फेके मागुली बबिया दिल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ऊर्जा के लिदंसा कागु अर्थतन्त्र यता राष्ट्रिय प्राथमिकता के तयागु लि विद्युत लागा नियमा कि निकाय लगानीकर्ता उपभोक्ता हो मेगु स्वपुतै पिनिगु विश्वास त्याकेगु याना ज्याया मागु ध्या दिगुदु विद्युत नियमन आयोग आर्थिक दण 2082-83 सम्पादन यागु ज्या क घागु दक्षिया प्रतिवेदन ललहाना कागु झोले मन्त्र श्रेष्ठ नियमा कि निर्णय हो नीति देके गुली बजार आवश्यकता हो स्वपुतै पिनिगु च्युत्याता ध्यान बि मागु ध्या दिल कास्किया पोखरा महानगरपालिका 18 अन्धेरी कुने छे या जग मुइगु झोले चाया ढिन लाना निमा मजदुर सिगुदु सिपिले पर्वत्या महाशिला गाउँपालिका छ फलाम खानिया छेन्दुमा निगुद दुमा विक्रम सुनवार र गोर्खा पालुङटार नगरपालिका साचोनीमा सुई नेद दुमा राजु कुमार जुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्किया प्रहरी निरीक्षक दीपक प्रसाद रिजालन जानकारी भ्यादिल पोखराया लोकम्फागु धार्मिक लागाविन्दावासिनी डगले थुगुसी नवदुर्गा महोत्सव नलिसुवा निसी महानवमी तक्क थिति ज्याजुयाना झज धाक संस्कृति ज्यासो नपाङ्कोसा गोइगु जुगुदु विन्दावासिनी धार्मिक लागा विकास समिति मिग पोसरा
पोखरा पत्रकार मुजिया गोसा गोया नवदुर्गा महोत्सव ज्ञान महायज्ञ विशेषण जानकारी बी गुख महोत्सव कथम बिन्दावा श्री नवदुर्गा शोभायात्रा अब श्रीमद देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ मु आकर्षण कथन दई गुनापा सुचौ बिगुद प्रहरी सोङ्गु करोड सुई च्याकु लाख शिवे उप अनलाइन सट्टेबाजी व क्रिप्टो कारोबारे लावापी लावाना लावामा क्षमा ल्यामया था जोङ्गुदु जोमा सरलाइय चन्द्रनगर गाउँपालिका तीन छेन्दुमा व आए महानगरपालिका बत्तीस चोनीमा विक्की कुमार महतो जुगु जिल्ला प्रहरी परिषद यहाँ थागु ख थौ विश्व हुलाक दिवस नेपालेन थिथि ज्याचोया नाहना सङ्गु दु हली हुलाक सङ्घ पलिस्ता जुग दि अलुमन्ती दाँपतिक अक्टोबर 9 स थो दिवस हना होया सङ्गु दु सन् 1874 अक्टोबर 9 स पलिस्ता जुग विश्व हुलाक सङ्घ सन् 1969 निसे हली हुलाक दिवस हने त सङ्गु ख लिपाङ्गु इले हुलाक सेवा पाख्ने राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र शैक्षिक प्रमाण पत्र व मेगु सरकारी भो मनुतेगु छे छे तक्क ठेङ्केगु आजुको बिगुख थुकिन सरकारी सेवा प्रभायता अफुकेता ग्वाली बिया सङ्गुदु आदेश पिनिया बुख थुकुसिया नोबेल साहित्य शिर्फा क्यानाडा या कवि वो लेखक नापा लेखक एन कार्सन्यता लल ह्याथ्याङ्गुदु शास्त्रीय परम्परा नापा रोचक सम्वाद पाखे समकालीन साहित्य नीति नुगु ख्वापा त बोलङ्कीमा साहसीको नवीन कीर्ति या कथा कार्सन यात्रा शिर्पा लल ह्यागु कोसिनागु नोबेल समिति धागुदु रुस युक्रेन या डोनेस्को ले यागु बम आक्रमणे लाना सुई सुमा मनुषिगु दुसा निगु यात्रुवाहक बस यागु बम आक्रमणे झिन्छ्यामा मनु खापा जुगुदु युक्रेन राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की छाका यात्रा कया दुख पोङ्का दिसे रुस या अपया चङ्गु हाठ्या व आक्रमण या नीति छाक पला ह्याके मागु ली बिगुदु अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्क रुबियो छुन भौगोलिक लागा वा व्यापारिक लम्पी अत्याधिक आपला निर्भर जुया ऊर्जा आपूर्ति दिफैगु थुकी विश्वव्यापी स्थिरता व राष्ट्रतेगु स्वतन्त्र निर्णय क्षमताके लिचो लाके फैगु ख्याचो बिगुदु ग्रिस विदेश मन्त्री जियो घोष गेरा पेट्रिट टिस नापा एन्थेसे जोगु मङ्का पत्रकार मुजा वेकला आपूर्ति ऊर्जा वैकल्पिक लम्पु विकास यायता भू राजनैतिक हस्तक्षेप छ ऊर्जा प्रभाव सुरक्षित त्यता अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन सेल्ला के त अमेरिका लगानी याना सङ्घु खना दिला इरान नापा या कचौं व हर्मु जलमार्ग या समुद्री सुरक्षा विशेष उपया चोङ्गु दुख या दति रुबियो चिकम प्राकृतिक ग्यास नापा या ऊर्जा आपूर्ति या लम्पुई थिति कथन या ज्याया मागुली बिया दिला वेकला ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नापा तपेङ्क स्वागु कना दिसे क्षेत्रीय अस्थिरता विश्वव्यापी ऊर्जा बजारी कमजोरी उलाकिनेगु नापा धया दिगुदु अब मौसम या जानकारी थौ देया हिमालय पहाडी लगाया छुन तासे मल नापा लाप्सा तोय फेव फोन नापा चपुक हवाईगु सम्भावना दु मधेस नापा कोशी सुदूर पश्चिम प्रदेश या तराई लगाया छुन तासे बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई लगाया मोथासे मल नापा लाप्सा तोय बसिता तसक हवाईगु सम्भावना दु छ कोशी बागमती सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लगाया कोशी प्रदेश या तराई लगाया छगुनीको थासे तस्कम वाविगु सम्भावना कुबिगुन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागुदु वङ्गु निपे गाउँसँग यस सुनिगया क्वाज निङ्याको फुटी सङ्गु डिग्री सेल्सियस दथे चोना दासा थौ निपेङ्गु निसे निखुगु डिग्री सेल्सियस दथे चोनीको दुखुमा दु थौ सुथे ये सुनिगले या त ई जुया ङे पेङ्गु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनिला या त ई जुया पी खुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल समाचार पुन चिताईले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिशा शुभ

दि रेडियो नेपालीन आङ छिरिङ लामा शेर्पाने सेरिकेला साङ्गुर सेन्डोनाङ सिलोन तेजिन लोन्सोक ल्याखुङकी प्रेस ब्रिफिङ तेमा सुङकी थाक्चो चुचो तिवा ट्रिम ग्याछा जब कोर्ला तुसेन तिवाला खक्षण पुछि ने जो छर्सी तेजिन हेलो सरकार कि क्याउ लाकी थो तेन वाय ल्याखुङकी सेतुप नङसिन लोन्सोक कि असोस लाकी गते सुचिकी सेर्मुदेउ सक्दु कि ससिङ रङजुङ कले तङ नाथुङ कोर्की अध्यादेश सुम खेफेल कि तुप्ला सिङजिनला सिफारिस क्याउ सेन वाय ङ्क्याने बजारला कालो बजारी तङ चालाक तुई गोङ फडुप कोर्ला ङ्याम्सी कितुप सेनवाय सिलोन दैवी प्रकोप सुङक्योप कोसला तन्दासक ट्याङ्गा अरब चुकदिन तङ करोड सुङचुक सिनाङ लाक्पा ट्याङ्गा दुनवाय तिनाङला ट्याङ्गा अरब चिक राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोसला निकासा चुङ्गुप सेनवाय असोसला कि गते च्याप्गेने जुन गते सुङ्गी नाङला हेलो सरकारला वाउ तोङ चिक तङ सही दिन तङ चुङ्गा आङा गुनासो नाङला तोङ चिक तङ दिन्छु थोन जी गुनासो थाक्चो चुङ्गुप सेनवाय तुराङ्क्याने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कि असोस लाकी गते ताङबोने जुन गते निशु सुङकी ल्याखुङ तिवाला लेचत पाकी मजा माकुन्दु तङ तेन्तेन क्याउ तुसो नाङला ल्याखुङला मेन्देउ सुङकी तोङ चिक तङ सही चिक तङ टुक्सुरे दिन लेचत पा तिवाला ठिम तङगुप्ला निर्देशन बिन्दु सिलोन ल्याखुङकी सेतुबिन ग्याङसिङ तेजिङ दलेन लक्से लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी जन्दातिवाला उद्यमशीलता तङ नव प्रवर्तनला थितुप्ला सुङकी खोरुक जोइङ ओतुप सुङवाय नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट तङ बैङ तेजिन वित्तीय छोकपा परिसङ नेपालकी कोडिक्याउ थेङ कि संस्करण कि ल्यारिमला सुङलप नगिन लोनपो तिमिल सिनाकी जन्दातुई लोपजुङ तङ लक्से तियो थने ग्यालखापकी पल्जोर यार्गे जोतुपु सुङसुङ लोनपो तिमिल सिनाकी ङ्याम्सिप तङ नव प्रवर्तनला ग्रोसुङ लाक्पा तङ ने जन्दातिवाला रङ्गिल्ला रङ लाका किथोपु कोकप जोगोला सुगेप नाङवाए सुङकी हुलाक सेवाला तन्दी लक्से तङक्यान थि सुङकी कुरियर सेवा कि शिला ग्याछा जोप्लाका गोजुन वाय थेङ सही चिक तङ अप्चुङाङी कि हुलाक तुसेन कि कप्ला हुलाक सेवा विभाग कि ग्याल्सा काठमाडौँला कोडिक्याउ ल्यारिमला ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्से लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी दलेन लक्से कि यार्गे गल्सिनाङ हुलाक सेवा सङ्घ खक्षण पोहोतुप सुङसुङ ल्यारिमला एम्बी तन्दोकला बेलायती सुङसप रूप फेन कि हुलाक सेवा यम्बुलात्र मिदा क्याने जम्बुलिङला सङ्घ दि सेवा थोकिन होतुप ख्यान्तोक नाङसुङ तुराङ क्याने हुलाक टिकट कि लोपजुङ तङ याम्सिप त्यामा एम्बी लोग्यु तेजिन रिक्सुङ कि सुङक्योप्ला जन्दती हुर्थकी गोला सुगेप नाङवाए सुङकी ल्याचेतपा तुई तम्याङे दुब्ला तङ गुनासो सुनवाई कि तोन्दोकला ठिम टडी क्याने डेलो तुप अधिकारी तिवला गुनासो यन रङ गौ टडिक प्रस्ताव क्यान वाय सुङकी ट्रेड युनियन मेता जोशीमा निजामती ल्याचेतपा तुई गुनासो गेन्दुप दास माङे सिने गुनासो क्यासीमा ठिम टडी क्याने रङ गुनासो गेन्दुप टडिक खुर्ने उङ्गे नोतुप सेन वाय प्रस्ताव क्याउ विधेयकला ल्याचेतपा तुई गुनासो गेन्दुप टडिक प्रस्ताव क्याउ ससिङ टडिक सहकारी सङ्घीय मामिला तेदिन सामान्य प्रशासन लोनखाङकी सेतुबिन सुङकी गुर्सिङ लोतोक देपुतेवाला ट्याङ्गा अरब चिक तङ करोड ङपचु अनुदान तेरुप गन्वाए कृषि नाठुङ तेजिन खोरुक लोनपो गीता चौधरीकी ससिङ लोतोक देपु मितिवाला सेमसुक फर्जी तुप्ला तेरुप अनुदान कोर्की लाकी सिजु दाङ स्वीकृत क्या नगुप लोनपो चौधरीकी गेर्की टुङ्गी खाङकी सेतुबिन अनुदान कि ट्याङ्गा बर्दिया रौतहट कैलाली तङ कञ्चनपुरकी ससिङ लाका कितुप ल्याचतवातीवाला तेरुप लोन खाङकी सेनवाए नेपाल विद्युत प्राधिकरण कि अनलाइन तेमा लोक कि ट्याङ्गा चोलु मितिवाला लाक्पा सुविधा तेरूप थाक्चोत क्यान वाय लोक प्राधिकरण जिन्चोक छोकपी छोकमी अम्सु किरण साई कि सेतुप नङसिन डिजिटल सि तेमा लोक कि ट्याङ्गा चोलु लुक्सोला खाक्सन पोसि लोक थोकु मितिवाला सुविधा तेरूप थाक्चोत क्याउ सेन वाय त अनलाइन तेमा ट्याङ्गा चोलु प्रिम्बाला लोक कि ट्याङ्गा चोलु प्रिम्बाला ग्याछाङी छुर तङ स्मार्ट पे रिवार्ड सङ्ग्यौ जिन्क्योङ छोकपी छोकमी साई कि खेन्तोक नाङसुङ दुग्राङ क्याने

0: बुक छुलोक तेजिन सिंचाई लोनपो विराज भक्त श्रेष्ठ की डिजिटल शी ते मल्लो की टेगा चोलुपला मीमांग तेरीला शू नांगवाए कास्की जोंकी पोखरा महानगरपालिका वडा आङ निशु गे ओखलेला लोपटाकी बस डपचोकला सोर्ने लोपटुक मिराङ जिताङ एम्बा मिरा चिक्याने मिराङ नासागन वाए नासागलुप्तिव कालिका बोर्डिङ स्कुलकी लोपटुकतिव ममता तिवारी असीम कडेल रुमिका नेपाली ताङ शुभेच्छा तिवारी हिन्दु सेन वाए दुग्राङ क्याने बसला लिफ्ट लाङने बसला ओतुप लोटुक सुर्याङ कि बाबुराम तिवारी साङ नासागलु सेन वाए बस नाङला मिरा निशु नि ओतुप नाङला एम्बा क्योन फोकु मिरा दिन म्यानखाङ नासोकला मेन्जुगि ओदुप सेन वाए दपक्यक काङक्याने सुरुइन सिरुप कोर्ला तामङ्या ट्याङबु सचेतुप्ला पोखरा महानगरपालिका कि मिराङ कि ङ्यामसिप छोकपा जोन वाए छोकपाला निमाङ कि नाङला प्रतिवेदन पेश कितुप्ला निर्देशन बिन्दुप सेन वाए बदौलाकी गते चिथम्बी थेर्मु बोटेकोसी चाङबुला औषतोक तेमा बागमती प्रदेशकी रसुवा दादिङ नुवाकोटचाङ चितवन जङ्खाला फोकु क्योन्की थो तेनवाए बागमती प्रदेश सुङ्की जो प्रतिवेदनकी शतोकताङ टोपी तेमा क्योन फोकु थो तेन्दुप सेनवाए बागमती प्रदेशकी लोन्छेन किरण थापा मगरला प्रदेशकी आन्तरिक मामिला थिम तेजिन सहकारी लोनखाङकी प्रदेश टुङ्गिक महेश भट्टराईकी प्रतिवेदन सिगेपु सेनवाए प्रदेश सुङ्की सार्वजनिक क्याउ प्रतिवेदन नाङसिन रङजुङ कालेलाई खेल्ने मिमेरा तोङ चिताङ सही जिताङ अप्चुङा आङा नासागलुप इन्सिसी मिमेरा तोङ अताङ सही निताङ गेचुग्याङ तरुङसाङ तोर्नोदुप सेनवाए तुङ्रा क्याने बागमती प्रदेशकी जोङखा जिनाङला सतोकताङ टोपितेमा तोङ निताङ सही सुमखाङबाला क्योन फोकु सेनवाए सिसी तोङ सुकसुमताङ सही दिनताङ गुप्चु गुवाङला सेनबुराङ सुङ्क्योप क्याउ सेनवाए बागमती प्रदेशकी प्रतिवेदन नङसिन सतोक तेमा साम्बा लोप्टा ठोटेन छोकपा ताङ थुङ्गुप्छु आयोजना त्यो तेजिन कृषि सकुलासङ बङ्गी क्योन फोकु सेनवाए ज्ञानाकताङ क्यान्थ्यु सन्छम नाका हिल्सा तुसोरिङ बुनेजुन जिन्चोङकी माथोप्सीमा सन्छम सकुलकी एमबिमी सुङ्क्योप लेचेतपातिवाला साप्सामा थुङ्गुप छुताङ ठोटेन मेन्जुला कलेचुङ्गुप सेनवाए गलुप असोसलाकी गते गुनेजुन सन्छम नाका जिन्चोङकी माथोप्सीमा निमिट्याङ साप्सामा तिव सङमेङ्याउ नेताङ थेन्दुप हिल्सा सन्छम सुङ्क्योप सोपी इन्सपेक्टर केदार सापकोटेकी ख्यान्थोक नाङसुङ दिपरलाराङ ज्ञानक छोकी सन्छम पेसीमा दाङ एमबी मिमिरा सही चिकताङ सियाजी ज्ञानाक्ने एम्बु वानवाए खोङतिवा एम्बु सन्समला लेप्सिनाङ एम्बी छोकला खा ओतुप्तपकी खोङतिवाला खाङबा लोकुला कलेचुङ्गु सेनवाए तन्दा हिल्सा सन्समला सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी मिरा सुम्ची सुवाङा एम्बी कोर्सुङ मक्मी मिरा निशु ताङ बन्सार अध्यागमन ताङ बन्सार ल्याखुङकी क्याने मिरा टुकचुर्या सुम्की सुम्की ल्याचतपति ओतुप सेनवाए सोलु खुम्बुकी सोलु दुधकुण्ड टङ्केर्की रसुवाकी बोटेकोसी त्यामा वाउ शतक त्यामा क्योन फोकुतुई तन्दकला ट्याङ्गा बुम टुकचुर्या टुक राहत ट्याङ्गा रोग्रम सिगेम वाए टङ्केर्की मिमाङ कुसप्तिव ग्यागेन्तिव ताङ ल्याचेतपातुई त्यामा दु ट्याङ्गा शतक ताङ टोकपी त्यामा क्योन फोकुतिवला सुङ्क्योप राहत ताङ पुनर्स्थापना कि तन्दकला बिन्दुप सेन वाए तुङ्रा क्याने रसुवाकी शतकला स्योर्ने तोरु सोलु खुम्बुकी मिराङ ङपचुङा आङी कि खाङबिमितिवला खाङबा रेरेला ट्याङ्गा तोङ ङपचु ङपचु बिन्दुप टङ्केर्की टङ्केर सो नामग्याल जाङबु शेर्पाकी ख्यान्तोक नाङसुङ रसुवाकी बोटेकोसी त्यामा औ शतकला स्योर्ने तोरुप मितुई तन्दकला कार्यपालिकाकी थाकचोत नाङसिन राहतकी ट्याङ्गा बिन्दुप सेनवाए दि अटम सिजन कि तन्दकला खाङरी सुम्ची सोचिक जेकुला मिमिरा सही दिनताङ गेचुग्या गेकी अनुमति लान वाए टसम सोक्पी बिन्दु ख्यान्तोक नाङसिन चिलो निटोङ निसुटुकी अटम सिजन कि तन्दकला खाङरी नासोक जेकुला छोकपा गुप्चु गुवा चिकी सही दिनताङ गेचुग्या गेकी मितुई अनुमति लाउ सेन वाए टसम सोक्पी लेन ख्यापेल कि तुप्मी सुरज घिमिरेकी खाङरी सुम्ची सोचिक जेकु जन्दा सही नताङ गेप्चु गेचुग्या नि ताङपुम सही नि ताङ टुकी अनुमति लाउ सेनवाए अनुमति बिन्दुप त्यामा छोकपी खाङरिजेको मितु त्यामा ट्याङ्गा करोट निसु ताङ बुम दिन्छु थोन नि रोयल्टी दु सेनवाए जम्बुलिङकी तेरिसनाङ खाङरी थेन्पो चोमोलोङमो बेस क्याम्प डोबलामला खेलुप खुम्बु सकुल्ला तेरिसनाङ थेन्बु दासला जोलुङ्गे पुल याङना साम्बा जोनवाए खुम्बु पासाङला मुयुल सोकपा वडा आङ जी लुख्लाला जौदी साम्बा जम्बुलिङकी तेरिसनाङ थेन्बु दासा मिटर टोङ टुकताङ निसु थेन्बु दासाला जौ सेनवाए ट्याङ्गा करोटङा बुमङा ताङ तोङ गुप्चुगुवाङा दोसुङला जौ दि साम्बा मिटर सही निताङ टुक्रिङ बुटुप सेनवाए दि साम्बा जोसीमा खुम्बु सकुलकी मितेवाला फारसुर कितुप्ला झोलमुचुङगुप ताङ टोसम सकुल्ला जिकोर्ला फेउ मितेवालासाङ झोलमुचुङगुप सेनवाए दसैँ कि तुसोला मितिवाला जोलहमु जोप्ला तङ ट्राफिक टडी कितुप्ला गट स्थापना ने जुन छेवा च्याङासे गेलखप नगी दासा तेरिला रुट परमिट खुला कितुप गनवाए डिमडुल टडिक सकपाला देउ एमबी कोर्सुङ मक्मी ट्राफिक कोर्सुङ मक्मी तङ डिमडुल सङमेन दुई सकदुकी दसैँ तुसो नङला रुट परमिट खुला कितुप थाकचुत्क्याउ सिएनवाए सकदुकी असोस लाकी गते निशु सुन्ने जुन दसैँ कि तन्दोङला टिकट बुकिङ बेतुप थाकचुत क्यानवा सिसी लामकी नेताङला खाक्सन पोसी ने लामला मि खुरुप गाडी त्योला खाक्सन पोसे एप सिएनवाए दसैँ कि तुसोला मितिय फारसुर बङ्गी कि तुप्तकी डिमडुल टडिक टिकट टडिक लामकी नेताङ ताङ मितुई सुङ्क्योप नेताङला खाक्सन पोसे एप डिमडुल टडिक सक्पी सेतुकिन तुग्रङ क्यानियन डिमडुल सङमेन महासङ्घकी तुसेन तुई कप्ला तिन तिन क्याउ गाडी कि ट्याङ्गा सिनाङ लाक्पा ट्याङ्गा लङ्गुप म्याङ्गुला डेलो तुप्तियो तेरिला सुनाङ वाए तिन तिन क्याउ सिनाङ ट्याङ्गा लाक्पा लासिङ ठिम तङ्गुप महासङ्घकी टुङछे डेकनाथ गौतम कि ख्यान्तोक नाङसुङ महासङ्घकी टिकट काउन्टरला लाका कि तुप लेचतपतिवाला टिकट लङ्गुप लङ्गुप मितिवाला जोलमु क्याने टिकट तेलुप्लासङ सुवाए सिगेल्ला लाका कितुप्ला जापान तोङी सिंह ट्याङ्गालाउ क्योनला एमबी कोर्सुङ मक्मिकी मिरा सिक्ला जिम्वाए जिम्बुमी काठमाडौँ महानगरपालिकाकी वडा सुम्ची सोआ सिक्ला देतुप दाङकी गोराही उपमहानगरपालिका वडा आङचिङी खाङबा इन्दुप्लो सुम्ची सोआ निकी मानबहादुर भण्डारी इन्दुप सेनवाए जापान तोङी सिंह मिमेरा सिकिला ने ट्याङ्गा तोङताङ बुम दिन्छु थोन दिन लाने टोने गलुप खम्चुकी शिला काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान ल्याखुङ टेकुने लगलेन क्याउ कोर्सुङ मक्मिकी खोङला जिम्बु सेनवाए खोङला ठिम तोङ्गुप्ला ताङ न्यामसिप कितुप्ला वैदेशिक रोजगार विभाग तहाचाल तङ्गुप सेनवाए नेपाली काङ्ग्रेसकी थेङ च्याङी सक्सेन नङ्गी सम्बा गोठी थप तन्दोक्ला कि ओतु बोट लुकु तुसो तन्दा छुजो घण्टाङी पर्नुवाए दिसिनाङ गमाला निन्मो छुजो सुमसेक कि तेन तेन क्याउ बोट लुकु तुसो पर्ने त गमु छुजो ङसेक बोट लुकथोपु केन्द्रीय ओदेम सक्पी सेतुपिन टोपकी छुजो दिने जुन गोचु बोट लुकु ल्यारिम्ला बोट लुकु कुसप्तिव बङ्गी ओतुप क्याने बोट लुकु तुसो परु सेनवाए छोक्सो छोक्सो सोन्पा महामन्त्री सहमहामन्त्री तङ केन्द्रीय छोकमितिओ थप तन्दोक्ला तोङ दिन ताङ सही सुमताङ चुपदिन महाधिवेशन कुसप्तुई बोट लुकिन होतु सेनवाए रेडियो नेपाल ने सेरी केला साङ्गुर डुसुङ तुझी छे
1: लुङबा छिक्याल युल ठोङकेर मिमाङ तेरिसा लेपु रिम्बाला लोग्यादम्बा जुनमा छै लाका ख्याउ थाक्रिङ ग्याङसिङ गी यार्केला आकाशवाणी ल्यान्डलाइन सिडिएमए जुग्ला मोबाइल सुविधा गी लोग्यु कि लेगेन डुबा ख्यानुवा टेलिकम ग्याङसिङ छेप्जी कि थुतो सम्बा कि लाक्षे ओदो ग्याङसिङ छेप्जी निरी खेलेन चिक्दा हिन थाक्रिङ ग्याङसिङ छेप्जी कि तेमा लुङबा यार्के तुङ्गु निरी तम्चा निरी खेलेनिन
2: नेपाल टेलिकम

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तमाङ सान गिर्जी रङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ बजार रि मिनिसे खाजी दबाई नोन कम्पनी ला ग्यास सिलिन्डर देपारी याङबा ताबा मुला गठ स्थापना हेन्से फुलपाती धोना याम्बुला गोर्डु ग्ला ग्याम मिनिसे ग्यास सिलिन्डर देपारी खाम्से दा मुला बिसी नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ से पाङबा मुला गठ स्थापना हेन्से फुलपाती धोना याम्बुला गोर्डु ग्ला ग्याम मिनिसे राङथेन मुबा सिलिन्डर स्यान्दो कम्पनी सिलिन्डर थेन्नोन देप्सी तोकलाबा टाङ्गारिन सिलिन्डर याङबारी खाम्से दामुला निगम थेन ग्यास विक्रेता महासङ्घला रोरी स्योला कु न्यासी सोमचुई मिनेट हेन्से दिनिला ब्ली यामा धोना ग्यास पिन्से दामुला सङ्से पाङबा अनुसार बालाजुला नेपाल ग्यास ला उद्योग पेप्सी कोलारी मुबा सागर ग्यास ला गोदाम सुके धारारी मुबा बाबा ग्यास ला डिपो सिफल री मुबा एभरेस्ट थेन सुगम ग्यास ला केन्द्र कल किला साई बाबा थिएन श्रीकृष्ण ग्यासला गोदाम थिएन ललितपुरला हरि सिद्धिरी मुबा श्रीराम ग्यासला उद्योग ग्याम मिनिका देशे सिलिन्डर देपारी खाम्से दामुला निगमसे पाङबा अनुसार स्योला कु न्यासी सोमची मिनेट हेन्से दिनिला ब्लिङ ह्यामा धोना ग्यास किनबारी खाम्से दामुला कास्किला पोखरा महानगरपालिका निचुई ब्रे ओखलेला भ्राग्याम तिनी स्योरी लोफखाङला बस दुर्घटना तामा मेन्डोब्ली लोबोन थेन भेन्डो गिक होजान घ्लाला मिनी सी बामुला तिनी स्योरी माज थाना ग्याम कालिका इङ्ग्लिस बोर्डिङ लोफखाङला लोबोन कादे किन्सी खाबान लाबा बस ओखलेला भ्रारी दुर्घटना ताबा मुबा दुर्घटना ग्याम चुइसोम दिङला ममता तिवारी असीम कणेल चिब्ली दिङला रुमिका नेपाली थिएन शुभेच्छा तिवारी सिबा मुला बिसामा बस रि लिफ्ट ऋषि क्रेबा पोखरा निचुई ब्रेला डुचुई ङा दिङला बाबुराम तिवारी नोन दुर्घटना ग्याम सिबा मुला दुर्घटना दा च्याबा गोबारी महानगरपालिका से ग्रेन स्यार अधिकृत बद्रीनाथ सुविदिला थुतबोन्डी मेन्दोङा सदस्यला च्याबा साइबा समिति सोबा मुला चुराङ लासिन पोखरा महानगरपालिका चुई ब्रे अधेरी कुनारी दिमला जख्वाबा धुरी मा साब्राला ढिस्खोसे नाङसी मेन्दो नि मिनी सिबा मुला साप्रासे नाङमा पर्वतला महाशिला गाउँपालिका डु फलाम खानीला निची कु दिङला विक्रम सुनवार थिएन गोर्खा पालुङटार नगरपालिका निस्ला सोमची कु दिङला राजु कुमार सिबा मुला प्रतिनिधि सभाला हिमाली जलवायु पोबा प्रभाव जलवायु न्याय थिएन भोटेकोशी त्रिशुली विपद सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति लाची साङ्री सांसद कादेशे भाल पीडित कादेदा सुरक्षित घ्लारी चिबा थिएन फ्रिवाला धुरी राहतला व्यवस्था लातोला बिसी सुबामुला समितिला तिनी सिंहदरबार रिचिबा चिसाङ्री सांसद कादेशे भोटेकोशी त्रिशुली विपद प्रभावित थुम च्यासी खावा कादे घुङ्री काठुई लासी भाल विस्थापित कादेला राङलान जोङ नाङरी सुरक्षित ग्लारी थानमा ज्याबा ताला विशेष सुङबा मुला चुराङ लासिन सोलु खुम्बुला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका से रसुवाला भोटे कोसिरी खाबा भाल ग्याम प्रभावित मिनिदा लाक डुची ढुटाङ्गा राहत पिनबा मुला प्राकृतिक विपत्तिला धुरी भाल प्रभावित मिनिला उद्धार राहत थिएन पुनर्स्थापना रि रो तागाई विशी होजा टाङ्गा पिनबा हिला मुल्मी मास्टर थेन कर्मचारी कादे ढिक्सी कोश्री टाङ्गा झम्मा लाबा हिन्ला बिसी नगरपालिकाला ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापासे सुङबा मुला सरकार से हुलाक व्यवस्था दा सरकारी कुरियर सेवाला विकास लाबारी गे तिबारी माइबन मुला ग्यार्जा गिक्से नाचुई निचा जामुलिङ हुलाक दिन्छेन लाभसारी हुलाक सेवा विभाग से तिनी याम्बुरी सेङबा गेकोरी सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे नेपालला हुलाक सेवादा प्रविधि से विस्थापित लाबारी आखाम बिसी सुङबान चुताम सुङबा हिला सूचना थिएन संचार प्रविधिला ग्रेन विकास ताबन खाबा हुलबारी नोन हुलाक सेवाला महत्व च्याङना ताबा आरे सुङबान ब्लोन तिमिल सिनासे नेपालला संचार थुम्ला विकास रि हुलाक सेवा धुङ्रा पुइबा घेन्दुनला रोब्रिन मुला बिसी सुङबा मुला गेखोरी ब्लोनखाङला लोन राजेन्द्र कुमार पौडेलसे नेपालला हुलाक सेवारी दोषी छ।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। सरकार विश्व एसियाली खेलकूद में पदक प्राप्त केनिहार खिलाड़ी प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक के नगद पुरस्कार प्रदान करवाक निर्णय कलक। मंत्री परिषद के आई सिंह दरबार में बैसल बैठक से एशियाली खेलकूद में पदक जीतनिहार महिला कबड्डी और कराते खेल के खिलाड़ी प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक के नगद पुरस्कार प्रदान करवाक निर्णय कलक। अहिना बैठक से बिटोरी जमीन में बसवास करित आयल व्यक्ति सब के नामे जमीन दर्ता करवाक संबंधी समिति गठन आदेश 2083 स्वीकृत करवाक निर्णय कलक। बैठक पश्चात सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा के जानकारी दिलेन। अहिना का आजुक मंत्री परिषद बैठक से नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूह के सह न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपाने के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के पद में बढ़वा कर बेपत्ता कायल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग के सचिव पद में प्रतिस्थापन करवाक विश्व बैंक संग नेपाल अर्थक्वेक कैटास्क्रोफी वंड संबंधी मैंडेट एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करवाक स्वीकृति देवक लगायत निर्णय सब कायल गेल। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा के जानकारी दिलेन। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अपन नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग मार्फत सरकार के प्रमुख निर्णय कानूनी सुधार पावन तिहार लक्षित योजना तथा हेलो सरकार के प्रगति विवरण सार्वजनिक कलक। मंत्री परिषद के आसीन 21 गते के बैठक से भूमि संबंधी विपद संबंधी आ वन संबंधी किछ नेपाल ऐन संशोधन करवाक लेल बनल 3 अध्यादेश जारी करवाक लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कलक। अहिना का स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन आ सहजीकरण के लिए राष्ट्रीय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली कार्यविधि 2083 की मस्यौदा तैयार भ रहल प्रधानमंत्री के कार्यालय जनौलक। पावन तिहार आ संभावित विपद पश्चात आपूर्ति श्रृंखला में पड़ सकबाक दबाव के ध्यान में रखत केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अत्यावश्यकीय सामान के सहज आपूर्ति सुनिश्चित करवाक निर्णय कलक। बाजार में कालाबाजारी कृत्रिम अभाव आ स्वाभाविक मूल वृद्धि रोक नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन तीव्र कायल जात। पावन तिहार में सार्वजनिक यातायात में तोकल गेल भाड़ा से अधिक लेबाक क्षमता से अधिक यात्रु राख के आ मापसे का सवारी चलाव पर कड़ा कार्रवाई कायल जात। जोखिम युक्त निर्माणाधीन तथा ग्रामीण सड़क में सवारी आवागमन में रोक लगेबाक संगे सार्वजनिक छुट्टी के दिन में सेहो अस्पताल विद्युत खाने पानी दूरसंचार यातायात जेहन अत्यावश्यक सेवा निरंतर संचालन होबाक व्यवस्था मिलाल गेल अछि। नेपाल सरकार आ जनजी आंदोलन के प्रतिनिधि बीच भेल समझौता तथा आसीन 18 गते के निर्णय हिसाबे स्वीकृत पुनर्स्थापना आ सामाजिक संरक्षण के एकीकृत पैकेज कार्यान्वयन के लिए गठित समिति के आसीन 15 गते के बैठक कैनी निर्णय सब कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालय में पठाल गेल अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के अध्यक्षता में आई बैसल लगानी बोर्ड की 68 बैठक से 2 अर्ध जलाशय युक्त जल विद्युत आयोजना के लगानी स्वीकृत करवाक निर्णय कलक। बैठक से 10,75,04,97,000 के लागत के नार खोला अर्ध जलाशय युक्त जल विद्युत परियोजना 58.9 मेगावाट आ 10,42,33,62,000 लागत के सानी भेरी 3 अर्ध जलाशयुक्त जल विद्युत परियोजना 46.72 मेगावाट के लगानी स्वीकृत करवाक निर्णय कलक। अहिना का बैठक से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट सन 2028 फरवरी धरि व्यावसायिक उत्पादन करवाक आ माथिलो कर्णाली जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट के संबंध में परियोजना विकास समझौता के प्रावधान बमोजिम तत्काल निर्माण आगू बढ़ेबा सन आवश्यक सहजीकरण करवाक निर्णय कने समी कलक। बैठक से स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ता के प्रदान कायल जाय वाला सेवा में सहजीकरण और प्रभावकारी कार्य संपादन के लिए लगानी बोर्ड के कार्यालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन करवाक निर्णय कलक। अहिना बोर्ड द्वारा आह्वान कायल गेल प्रस्ताव सब आवश्यकता हिसाबे स्विस चैलेंज विधि से प्रतिस्पर्धा करा कर आगू बढ़ायल जेबाक सन आवश्यक कानूनी प्रबंध करवाक लेल कार्यालय के निर्देशन देबाक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नवीनतम सूचना प्राविधि में आधारित पूर्वाधार परियोजना के लगानी प्रस्ताव प्राप्त भेल नेपाल के नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा रोजगारी सृजना एवं आर्थिक विकास में पहुंचाव वाला योगदान के सेहो मद्देनजर करत ए प्रकृति के परियोजना विकास के प्राथमिकता देबाक निर्णय कलक। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा हुलाक सेवा के आधुनिक प्रभावकारी आ नागरिक मैत्री बनबैत सरकारी कुरियर सेवा के रूप में विकास करबाक सरकार के योजना प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन होइत आयल
बतौलनि छ। हुलाक सेवा विभागद्वारा 152 विश्व हुलाक दिवस के अवसर पर आयोजित फिलाटेलिक प्रदर्शनी कार्यक्रम में ओ बदल रहल समय आ नागरिक के आवश्यकता हिसाबे हुलाक सेवा के पुनः संरचना का आम नागरिक के पहुँच में पहुँचाव सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि छ। ओ आधुनिक प्रविधि के विकास संगे नागरिक के आवश्यकता आ सेवा प्राप्त कर के तरीका में परिवर्तन आयल चर्च करत हुलाक सेवा के समयानुकूल बनाब आवश्यक रहल प्रति जोर दिलनि। देशे भर फैलल गेल हुलाक संजाल के उपयोग करत सरकारी सेवा तथा सामग्री नागरिक के घर घर में पहुँचेबा सन प्रभावकारी माध्यम के रूप में विकास क सकबाक हुनकर कहब छलनि। हुलाक सेवा के पुनः संरचना क नागरिक के सहज भरोसगर आ शीघ्र सेवा उपलब्ध करेबा दिस सरकार।

सवारी चालक ट्रैफिक नियम के पालना नहीं करवा कर निर्धारित गति से तीव्र गति में गाड़ी चलावे वाला प्रवृत्ति के कारण सप्तरी में सवारी दुर्घटना बढ़ल है। आशीन महीना के 22 दिन में जिला में भेल 18 टा सवारी दुर्घटना में पड़ कर 4 गोटा के मृत्यु 33 गोटे घायल भेल है। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक विवरण हिसाबे दुर्घटना में 23 टा सवारी साधन दुर्घटना में पड़ल है। दुर्घटना में पड़ल मध्य 30 गोटे के प्रहरी उद्धार केने छल। ट्रैफिक लेन अनुशासन के कमी, तीव्र गति तथा लागू औषध मादक पदार्थ सेवन का सवारी चलाब दुर्घटना के प्रमुख कारण रहल। प्रहरी उपरीक्षक रूपक खड़का के कहब छन, हुनक हिसाबे चालक सड़क में अपनाल जा वाला सावधानी और ट्रैफिक नियम के पालन नहीं कैला से दुर्घटना के जोखिम बढ़ल है। अही बीच ट्रैफिक नियम उल्लंघन करनिहार सवारी साधन पर कार्रवाई कैला पर आशीन महीना के 22 दिन में 163 सवारी साधन से 1,73,500 जरिमाना संकलन कायल गेल। प्रहरी न्याय परीक्षक हेमराज घिमरी अय के जानकारी दिलन। लंबा दूरी में यात्रा करे वाला यात्री आ चालक के सुस्ता के लेल जनकपुर धाम आ लालगढ़ में रिफ्रेश सेंटर स्थापना कायल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय रामानंद चौक ट्रैफिक बीट लालगढ़ में सेंटर स्थापना कैलक। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के प्रमुख खगेंद्र कुमार दहाल के हिसाबे सेंटर में सवारी चालक तथा यात्री के किस समय आराम करबाक चाह पान तथा आवश्यक परामर्श लेबाक व्यवस्था कैल जात। पाबनि तिहार के समय में सड़क में सवारी साधन के चाय बढ़ला के कारण दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए इस सेंटर बनाल गेल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।